0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM ते. रेडियो 3ZZZ दे 92.3 FM ते पंजाबी दे इस प्रोग्राम विच आप सब नू जी आया नू. अज दा प्रोग्राम पेश करने लई मैं हरबीर सिंह आप सब दी सेवा दे विच हाजर हाँ. सब तो पहला सारे सुनने वाले श्रोतियां नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल. अज दे इस प्रोग्राम विच शब्द कीर्तन खबरां गीत संगीत तो इलावा कुछ गलबात कुछ रिपोर्ट्स अपने श्रोतियां दे नाल सांझियां करांगे. प्रोग्राम दी शुरुआत हमेशा दी तरह लो गुरबाणी दे पावन शब्द नाल करदे हां.

0: यार।
1: क्या निशा, तू पूरा दिन सिद्धू सिद्धू सुनती रहती है।
0: हाँ तो फैन हूँ मैं उसकी।
2: मिलवा दे फिर तुम्हें सिद्धू भाई से, भाई जैसा अपने।
0: सच में यार, सच में मिलाओगे?
1: बस इतनी सी बात, चल चलें।